0: तपाई रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: अब रंग फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी चमक बसुगो। परमेश्वर फिरिला रंगला भरोसा से रंगला जहान आशिष यंगला जय मसी तथा लसो फ्याफुला नमस्कार। स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वास श्री चमक बसुगो अंक 33 श्री रंगनीदा स्वागत मुला नियोग तामाङ तिनी रङदा जनवरी सिमुलकी रङला लुइरी रङला प्रिय जन गदेला लुइदा प्रभाव सोसिला ज्ञान सम्भावना मुला कि रङदा थामुला रोसी प्रतिज्ञा लसुबा कि जब रङ रोला आवाज डन्सुमुला खेन्दे रङला लागरी रोला योजना पालन लसुमुला रोसी रङला जहाँदा विशेष आशिष पिन्सुमुला चु रङिदा नला प्रश्न। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 परमेश्वर से अभ्राम दा सुंजी एला लुई देन एला कुटुम्बा देन एला आवाला दिन ग्याम थोसी थे लुई गा एदा ओनला थेरी न्यू इसी अभ्राम दा परमेश्वर से बीजी जब रोज एरांग दा हजबै कठिगन गे लवरी पिंसी मुला हेन दे थेला लागरी देन विश्वास तोवा तब रंग पक्कै ताबरी हमसुला कि जब रोल आज्ञा पालन लसी मुला रोसी रंग दा गेन इनाम पिंसी मुला। उत्पत्ति 12 अध्यायला 2-3 न एक ग्याम याकरकी गेन जाति खडा लाला थेन्दे एद आशिष पिल्ला न एद मीन प्रसिद्ध लाला थेन्दे ए आशिषला मूल दला एद आशिष पिन्मा गदे न आशिष पिन्ना थेन्दे एद शराब पिन्मा गदे शराब पिन्ना एक ग्याम नन पृथ्वीला देनन कुल से आशिष पिन्ला रोसी अब्राहम दा जे लवरी पिन्सुबा मुबा थेला लागरी लानन विश्वासला आवश्यकता तादोबा मुबा रो सेम लसु मुला कि खेसी रंगला बेनन सामान गरे ठ्याका नुपा देन थारेङला सारी यात्रा नुपा चुला आता रंगला जहान रंग नामसी देन नामला रोग देता विदाय लाबा हिन्बा चु लानन स्थायी विदाई तब तिग्द विषम उत्ति बेला मोबाइल फोन देन इन्टरनेट ग्याम संसार सुविधा हारेरे मुबा अभ्राम से रंगला आमा आबा वा सेन्दो हलाई ग्याम याङबा सल्लाह देन सुझाव गरेदा ज्ञानबला सट्टा परमेश्वरला छनोट लजी हिब्रु 11 अध्यायला छ विश्वास आलाना खलाइसन परमेश्वर दा ताङना लवरी आखाम तिग्द विषम परमेश्वर मुबा ग्लारी खबा मिसे परमेश्वर मुबा विवा ताम देन थेदा माइबा मिदा इनाम पिन्न बिसी विश्वास लदोला जम्मन मिसे छनोट लदो सेला तामुला थेनिगसी रङसे सेम लाभा तरिका जसे सोसेल वा परमेश्वर सामु रङला नम्र सोभरी छनोट लाभरी हमला परमेश्वरला ज्ञान पछ्याप लाभरी सम्भव देन सहज वा सजिलो तसेला आरे तसै चुसी रङ देन रङला जहानला सदस्य गरेदा परमेश्वर ज्ञान अद्भुत आशिष यङबरी अनुमति पिनला लिच अभ्रामला भतिजा लोत सदोम देन गमोरी जीवन मुबा अभ्राम से ओनबा विश्वास देन परमेश्वरला प्रतिज्ञाला आज्ञाकारिताला कारण से लोत देन थेला जहान्दा निश्चित विनाश ग्याम सोनालजी। उत्पत्ति 19 अध्यायला 29 सुरङला सी बेसिला सहर गदे सर्वनाश लजीबा रोसे अभ्राम दा डन्सुजी लोत जीव सहर दा रोसे नष्ट लसुजीबा थे सर्वनाश गुङ्ग्याम लोत दा तेजी लोत देन थेला जहान्ला लुइरी रोसी गेन दया ओन्सुजी लोसे जब हाजीबाई गेला कारण से आइनबा लोसे रोल दिमरी धर्मी लुई बिताबलसीजी आइनबा तसै अब्राहम रो देनला रंगला बराबरी विश्वास योग्यताबा कारण से हिन्बा चु कथा ग्याम यंग किगा लोपरी हमला जब यंग यंगला लुईला लागरी लसुला योजना दा नम्रता से पालना लसेला छनोट लाला परमेश्वर से यंग फिरी गेन आशिष खनेब लाला थेन्दे ब्रोसी यंगला जहानला सदस्य गदे देन रंगला मि गदे फेरी एन आशिष गदे बबरी मुला यंगसे रंगला जहानला हेर्चा लदोला विवसोल देन यंगला लुइरी परमेश्वरला योजना दा स्वीकार लबला सट्टा यंगसे परमेश्वरला प्रतिक्रिया पिन्दो मुला थेन्दे यंगला जहानला हेर्चा लबरी परमेश्वरी भरोसा थान्दो मुला रंगमन परमेश्वर से अभ्रामला लागरी लसुजी रोसी यंगला लागरी एन लसु मुला आमेन परमेश्वर श्री रंगीला जीवन रे प्रशस्त मात्र आशीष दिँदै प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङ्ला भाषारी न्यान्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 01661946 री सम्पर्क लस्युगो हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङ छङ्मदानु जयमसी नमस्कार।

0: 우리 에러다 라우.
1: 아하, 코티 남로 뭔가 수트라? 까바도 라고.
0: 까바도 누니? 멀리 디디바니 순사리 거거나 우드고바다 라고니?
1: हजुर हामी कहाँ नयाँ तथा पुराना आकर्षक डिजाइनमा सुनचाँदीका गरगहना अर्डर अनुसार तयार गरिन्छ।
2: दिदीबहिनी सुनचाँदी गरगहना उद्योग नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 शान्त बजार धादिङ प्रोप्राइटर मेनुका बराइली सम्पर्क नम्बर 9818-3274-73 9861-7549-88 9861-7549-88
3: होइन है भाउजू, कता जान लागेको हतार हतार गरेर?
1: हेर्नु न बाबु, छोराले मोबाइल झार्दै डिस्प्ले नै फुटाइदिएछ भने त्यही बनाउन जान लागेको नि।